0: இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சலாக கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மேன் நவீன் சக்சேனா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।

0: कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी BDT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations

0: नमस्कार। आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा, इतिहास के पन्ने, खेलों की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और आज का दिन क्यों खास है, इन सब के साथ स्टूडियो में मैं मौजूद हूँ नवीन सक्सेना। और आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ रेणु कटारिया को। नमस्कार रेणु।
1: नमस्कार नवीन, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। और नवीन, बहुत कुछ है हमारे पास आज अपने लिसनर्स को देने के लिए, तो आप बताइए कि शुरुआत पहले न्यूज़ हेडलाइन से की जाए।
0: रेनु, कोशिश करेंगे कि हम तमाम पॉजिटिव खबरें आपको सुनाएं, क्योंकि मौसम बदल

0: चुका है जी। कल शाम की जो फुहारें थी उनकी ठंडी ठंडी जो हवाएं चली उसके बाद वो आज सुबह तक मन को बहला रही है, मन को लुभा रही है। तो एक कप चाय ले लीजिए, अपने रेडियो का वॉल्यूम तेज कर दीजिए, क्योंकि हम बोलते बोलते आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, है ना। हमें सुनते रहिए और सुनिएगा अगले आधे घंटे तक, क्योंकि आज के इस आधे घंटे के प्रोग्राम के बाद आप दिन भर के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में हो, चेन्नई में हो, बेंगलुरु में हो या फिर हैदराबाद में हो।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि इन सब की खबरें हम आप तक पहुँचाने वाले हैं।
0: शुरुआत करते हैं रेनू से
1: जी। Union Home Minister Amit Shah has said that the center's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue.
2: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
1: Mr. Shah said committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary, he said. Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. The Home Minister said the centre is determined to identify and expel every ghuspaithia or infiltrator from the country. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
3: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
1: Mr. Doval also highlighted the urgent need for reforms in the structures and institutions set up after the end of the Second World War in 1945 to make them effective in dealing with contemporary international security threats.
0: रेनु, पश्चिम एशिया में संघर्ष समय जारी है, भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इसीलिए एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन की सीमा जो है वो बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर अपनी उड़ानों का परिचालन रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
1: Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, Modi government is expanding world-class sports infrastructure and state-of-the-art training facilities in India. He said in line with this, review meetings were held in Ahmedabad regarding the progress of sports infrastructure and related projects. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics.
0: वहीं खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज से शुरू हो रहे अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान शिलांग में एकीकृत बहुउद्देशीय इंडोर खेल परिसर का उद्घाटन करेंगे। वो इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। श्री मांडविया इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल अवसंरचना विकास तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा से संबंधित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो युवा कार्यक्रम विभाग के एक विचार विमर्श सत्र में भी शामिल होंगे।
1: एंड नवीन, द नेक्स्ट न्यूज दैट आई हैव इज अ लिटिल अलार्मिंग। The World Meteorological Organization, WMO, has said that global temperatures are likely to hit near record highs over the next 5 years. According to a new WMO report, annual global mean near surface temperatures during 2026-2030 are

0: predicted to range between 1.3 and 1.9 degrees Celsius above the 1850 to 1900 average. According to the report, there is an 86% chance that at least 1 year between 2026 and 2030 will surpass 2024 as the warmest year on record. There is an El Nino predicted for the end of 2026, which increases the chances of 2027 becoming the next record-breaking year, said Dr. Leon Hermansen, lead author of the report.
1: ये एक चेतावनी भरी खबर है कि देखिए जिस तरह से globally weather prediction हो रहा है और जिस तरह से मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा जब तापमान इतना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा.
0: And I'm sure Naveen, जिस तरह हमारे fathers, grandfathers इस बारे में अपने बच्चों के लिए इसकी चिंता करते थे, हम भी अपने आने वाली generation के लिए यही चिंता करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं.
1: तो यही आज से प्रण कीजिए कि एक पेड़ जरूर लगाएं, और अगर एक पेड़ नहीं लगा सकते तो एक पेड़ को जरूर बचाएं,
0: जी
1: कटने से जरूर बचाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस धरती को बचाने के लिए, इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए, पर्यावरण बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को कम रखने के लिए पेड़ बहुत जरूरी हैं.
0: और ये एक हमारा एक छोटा सा कदम है उसकी,
1: बहुत छोटा सा कदम है. अगली खबर पर नजर डालते हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 यानी 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं. NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी. NTA ने बताया है कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है. बात क्रिकेट की, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, IPL को फॉलो कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा और इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी. और अब जानते हैं कि आपके खास शहर की खास खबरें क्या है. रेणु
0: जी, बिगनिंग विद चेन्नई मेट्रो. नवीन, रिसर्चर्स हैव फाउंड रेड बैक स्पाइडर्स, आल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन ब्लैक विडोज, इन इनोर क्रीक ऑन द नॉर्दर्न एज ऑफ चेन्नई. दिस इज द फर्स्ट टाइम द वेनमस स्पीशीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सिटी एंड इन अ कोस्टल लो लैंड एरिया ऑफ तमिलनाडु. Earlier, the species had been found in Coimbatore, Madurai and parts of the Eastern Ghats. Researchers believe the warm and dry conditions of the old fly ash pond in Ennore may support the spider spread, while nearby salt marsh vegetation suggests it can adapt to coastal environments. Moving on to you, Naveen, what do we have from Delhi Metro?
1: दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है. वहीं दिल्ली के महापौर प्रवेश वाकी ने कल स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर उन्होंने अमर कॉलोनी वार्ड की नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण भी किया. अगली खबर दिल्ली की. दिल्ली को जाम मुक्त और आधुनिक परिवहन नेटवर्क्स युक्त बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कई बड़ी सड़क और संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन परियोजनाओं में एक्सप्रेसवे, सुरंग और एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं.
0: मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो, वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन विल अटेंड द 45th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एट द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इन बेंगलुरु टुडे. Earlier this month, Prime Minister Narendra Modi also attended the celebrations and the 70th birthday of founder Sri Sri Ravi Shankar. During the event, the Prime Minister inaugurated the new meditation hall, Dhyan Mandir, and launched year-long community projects focusing on mental health, rural development and social transformation. After the Bengaluru event, the Vice President will attend the Platinum Jubilee celebration of University BDT College of Engineering in Davangere before leaving for Goa on his next official visit.
1: रुक करते हैं मुंबई के समाचारों का.
0: जी,
1: मछली भंडार के संरक्षण और मछुआरों के

0: जीवन और आजीविका की रक्षा के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने मॉनसून के दौरान मौसमी मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मत्स्य विभाग ने 1 जून से 31 जुलाई तक तटरेखा से 12 समुद्री मील के भीतर मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों के संचालन पर रोक लगा दी है। उधर मुंबई महानगर क्षेत्र में मेट्रो 5 परियोजना के विस्तारित चरण को मंजूरी मिल गई है। मेट्रो 5A के अंतर्गत कॉरिडोर का विस्तार ठाणे, भिवंडी और उल्लासनगर को जोड़ने के लिए किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।
1: एंड द लास्ट न्यूज दैट आई हैव इज फ्रॉम हैदराबाद मेट्रो। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी हैज डायरेक्टेड ऑफिशियल्स टू डेवलप अ वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट। द कार्ड विल इंक्लूड डिटेल्स ऑफ ऑल वेलफेयर बेनिफिट्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो ऑर्डर्ड अ स्पेशल ड्राइव टू कलेक्ट डिटेल्ड इंडिविजुअल एंड फैमिली डेटा which will form the basis of an AI-based profiling system. He also instructed the IT department to issue the unified card centrally instead of different departments issuing separate cards. The unified card will include information from various schemes such as Arogya Shri, the Chief Minister's Relief Fund, fee reimbursement programs, labor welfare and education services. The aim is to simplify access to welfare benefits and improve delivery for poor and vulnerable sections of the society.
0: और अब रुख करते हैं कोलकाता का। पश्चिम बंगाल सरकार जनगणना की तैयारियां शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना सभागार में प्रधान जनगणना अधिकारियों के एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें तैयारियों की समीक्षा, प्रशिक्षण प्रदान करना और जनगणना के लिए सरकार के दृष्टिकोण को साझा करना शामिल है। इस कार्यक्रम के दौरान जनगणना 2027 के शुभंकरों, प्रगति और विकास का भी अनावरण किया जाएगा। तो ये थी आपके शहर की कुछ खास खबरें। खबरों के बाद अब पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि घर से निकलने से पहले आप जानना चाहेंगे कि आपके शहर का मौसम कैसा है। और इनु पूरे देश में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि कहीं बादल गरज रहे हैं तो कहीं समंदर की हवाएं झूम रही हैं।
1: जी।
0: तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं देश के 3 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता।
1: जी।
0: आज यानी शुक्रवार 29 मई 2026 तो मौसम का मिजाज कुछ यूं है दिल्ली वालों के लिए। बहुत खुशखबरी है दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि तेज गर्मी से राहत कल मिल चुकी है, है ना। और रेणु की मुस्कुराहट बता रही है कि उन्होंने कल की बारिश का बहुत मजा लिया,
1: बहुत पकौड़ों और चाय के साथ।
0: यस, और ये दश्ते आज भी बदस्तूर जारी रहेगा। मौसम विभाग कहता है आज दोपहर के बाद धूल भरी आंधी चलेगी और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। तापमान 34 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 24 डिग्री। ये बहुत सुहाना मौसम है। 41, 42, 43 से सीधा 34 डिग्री।
1: देखो नवीन, समटाइम्स आई थिंक जिस तरह यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश में है, इसी तरह हमारे मौसम में भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है।
0: और मुझे स्टूडियो के बाहर से एडिटर साहब इशारा कर रहे हैं कि शाम को छाता साथ रखना बॉस, वरना दिल्ली का ट्रैफिक और बारिश दोनों मिलकर भिगो देंगे। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली वालों, अगर आप बाहर निकलेंगे। मुंबई का मौसम अब धीरे धीरे मॉनसून को आहट दे रहा है। समंदर की लहरें तेज हो चुकी हैं। आज दिन भर आकाश में घने बादल छाए रहेंगे और शाम होते होते ठंडी समुद्री हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद है।
1: एंड यू नो व्हाट नवीन, जब मॉनसून बॉम्बे या महाराष्ट्र की तरफ पहुंच जाता है तो चाहे कितनी भी गर्मी हो दिल्ली में, एक दिल में एक खुश होना हमारे लिए बहुत जायज हो जाता है कि चलो अब महाराष्ट्र पहुंच गया है तो दिल्ली आने में अब दूर नहीं है मॉनसून को।
0: बिल्कुल, और महाराष्ट्र और विशेषकर अगर मुंबई की बात करें, मौसम हमेशा ही अच्छा रहता है। थोड़ी सी उमस हुई तो बूंदाबांदी हो जाती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री। और मेरी और रेणु को यही सलाह है, अगर आप इस समय मुंबई में हैं तो शाम को मरीन ड्राइव
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल
0: ना? एक काली सी कप चाय विदाउट शुगर, अगर आप सेहत का ख्याल
1: और
0: रखते हैं।
1: गाना सुनिए,
0: हाँ, रिमझिम गिरे
1: सावन।
0: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, बादलों ने अपना डेरा डाल लिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ आज भारी बारिश की संभावना है। अधिकतम 33 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री तापमान। और यहाँ की क्या खास विशेषता है रेणु? सीधी सीधी झालमुड़ी और बारिश का परफेक्ट कॉम्बो, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।
1: यस, And moving on to the other metros, Naveen, Chennai is expected to have partly cloudy sky. The

0: Minimum temperature was 29 degrees Celsius and the maximum will be around 40 degree. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
1: यानी कुल मिला के हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मौसम लगभग लगभग सुहावना बना हुआ है। चलिए और अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आज का दिन क्यों खास है हमारे लिए राजनीतिक सांस्कृतिक खेल और सिनेमा का हिसाब से।
0: And let's start begin with the International Day of UN Peacekeepers, which is being observed every year on this day, that is May 29, to honor the professionalism, dedication, and courage of military, police, and civilian personnel serving in the United Nations peacekeeping missions around the world. And the theme for this year is Invest in Peace. And Naveen, the United Nations General Assembly established this day in 2002, choosing this day because on this date, that is May 29th in 1948, the first UN peacekeeping mission, United Nations Truce Supervision Organization, was created by the UN Security Council in the Middle East. And India here has played a significant and long-standing role in the UN peacekeeping. It is one of the largest and most consistent troop contributing countries, having deployed over 290,000 personnel across more than 50 UN missions since the 1950s, reflecting the country's commitment to global peace and security.
1: और रिनु आज का दिन इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के नाम से भी जाना जाता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था. माउंट एवरेस्ट पर पहली फतेह आज के दिन 1953 में हुई थी. भारतीय नेपाली मूल के जाबाज पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नॉर्गे ने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कदम रखा था. और इस गौरवमयी घटना को याद में आज का दिन माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है.
0: और अगर हम इसको थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करें नवीन, तो देयर वर न्यूमरस अटेम्प्ट्स टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट मोस्टली फ्रॉम द चाइनीज साइड, बट एडमंड एंड टेंजिंग अटेम्प्टिंग फ्रॉम द नेपाली साइड सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द सदर्न नेपाली साइड.
1: और एक और घटना जो जुड़ी हुई है आज के दिन से, और वो है दारा सिंह से. इसलिए नहीं कि दारा सिंह बहुत बड़े चैंपियन थे, बल्कि इसलिए कि आज ही के दिन दारा सिंह विश्व चैंपियन बने थे. उन्होंने दुनिया भर में भारत की ताकत का लोहा मनवाया. आज ही के दिन 1968 में दारा सिंह ने मुंबई में कुश्ती में अमेरिका के मशहूर पहलवान लाओ थेस को हराकर विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था. तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से. और अब उन व्यक्तियों को याद करेंगे जो जुड़े हैं आज के दिन से. तो सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस कर लीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो हम कराते हैं, क्योंकि आज जन्मदिन है उस व्यक्ति का जिसको हंसने के सिवा कुछ आता ही नहीं था. नाम हुल्लड़ मुरादाबादी. आज के दिन उनका जन्म हुआ था. प्रसिद्ध व्यंग्य के कवि थे. एक व्यंग्यकार में उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की, शायद कम पड़ जाए उनके बारे में बताने. कुछ रचनाएं हैं, इतनी ऊंची मत छोड़ो, क्या करोगे चांदनी, ये अंदर की बात है. लेकिन हम अपनी बात को थोड़ा सा विराम देते हैं और सीधे हुल्लड़ मुरादाबादी से आपको जोड़ते हैं.
0: जी,
2: एक हमारे मित्र हैं, बड़े ही विचित्र हैं, नाम है बनवारी. 45 साल के हो गए पर अब तक है अखंड बाल ब्रह्मचारी. एक दिन हमने उनसे कहा, गुरु सिंगल से डबल हो जाओ, इधर उधर घास चरते फिरते हो, एक खूंटे से बन जाओ. मित्र बोला, शादी की बात मत करना, शादी से मुझे नफरत है. 20 साल पहले एक लड़की देखने गया था, लड़की ने देखते ही मुझे नापसंद कर दिया. उस दिन से ऐसा सदमा पहुंचा कि मैंने शादी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया. मैंने कहा, बनवारी लाल झक्की, इस बार तुम्हारी शादी हमने कर दी है पक्की. लड़की वालों ने हाँ कह दी है. अगले दिन हम बनवारी को लेकर लड़की वालों के घर गए, सोफे में बैठ गए बनवारी. लड़की की माँ ट्रे में चाय लेकर पधारी, बनवारी को देखते ही उसके छक्के छूट गए, ट्रे नीचे गिर पड़ी, प्याले व्याले सब टूट गए. बेचारी का सर चकराया और इधर बनवारी के माथे पर भी पसीना आया. वो मुझसे बोला, हुल्लड़ ये तू मुझे कहाँ ले आया. लड़की की माँ की जब बेहोशी टूटी तो मुझे अलग ले जाकर बोली, भाई साहब अब आपसे क्या छुपाना, मेरा सर तो इसलिए चकराया था क्योंकि ये तो मुआ वही है जो 20 साल पहले मुझे देखने आया था.

0: तो देखिए, आईना आपके चेहरे पर हंसी अब दिन भर हुल्लड़ मुरादाबादी को खोजिएगा।
1: जी बिल्कुल। एंड मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पर्सनालिटी टुडे इज मेल बी, हु इज एन इंग्लिश सिंगर, सॉन्ग राइटर, रैपर, टेलीविजन पर्सनालिटी, एक्ट्रेस एंड ऑथर, एंड शी रोज टू प्रोमिनेंस इन द 1990s एज अ मेंबर ऑफ द गर्ल ग्रुप स्पाइस गर्ल्स, इन विच शी वॉज निकनेम्ड कैरी स्पाइस. And here we're going to listen to her singing the song Tell Me, which topped the UK chart top 5. So let's listen into Tell Me by Mel B.

आज जयंती है किराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हीराबाई बारोतकर की। कला के क्षेत्र में 1970 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और खास बात यह है कि 1947 में हीराबाई ने अपने जीवन की सबसे खास प्रस्तुति दी। 15 अगस्त को जब देश आजाद हुआ तो उन्हें लाल किले पर खास तौर पर आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था। सुनते हैं उनके स्वर में ये खूबसूरत राग।

0: To Bob Hope, who was an English-American stand-up comedian, actor, singer, dancer, athlete, and author. With a career that spanned nearly 80 years, Hope appeared in more than 70 short and feature films, with 54 feature films with Hope as star, including a series of 7 road musical comedy movies with Bing Crosby as Hope's top billed partner. And here we're going to listen to his song Thanks for the Memory, which was his signature tune. And Hope retired in 1997 and died at the age of 100 in 2003. And this song is a popular song with music composed by Ralph Ranger and lyrics by Leo Robin. It was introduced in the 1938 film The Big Broadcast of 1938 by Bob Hope and Shirley Ross. So let's listen into this captivating nostalgia, Thanks for the Memory.
1: And no harm done. So thanks for the memory of crap games on the floor.
2: Nights in Singapore. You might have been a headache, but you never were a bore.
1: I thank you so much.
3: कला और संस्कृति के क्षेत्र में आज का दिन बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आज पुण्यतिथि है उस व्यक्ति की सिनेमा में जिसकी आवाज़ ही काफ़ी थी, जो हमें एक ऐसे फ़कीर की याद दिलाता है जिसने पर्दे पर शहंशाह का ताज पहना था. आज हिंदी सिनेमा के भीष्म पितामह पृथ्वीराज कपूर की पुण्यतिथि है. आज ही के दिन 1972 में अभिनय का ये बुलंद सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया था.
4: उसे तड़पते दीजिए लेकिन रोने ना दीजिए. वो सब माएं भी अगर आपकी तरह रो पड़ी जिनके बच्चे आपके बेटे के साथ मैदान जंग में हैं, तो हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा.
3: ये रोबीली आवाज पृथ्वीराज कपूर की ही थी. साल 1931 में आई भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा से अपने अभिनय का जादू उन्होंने बिखेरा था. भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभिनय की जो अनमोल विरासत वो दुनिया को दे गए, आज भी बॉलीवुड की धड़कन बनकर धड़क रही है. पद्म भूषण और सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पृथ्वीराज कपूर को नवाजा गया है.
4: अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती. नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस असीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे. मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो.
0: Very true, Naveen. Some voices, you know, they just stay there and these legends can never be forgotten.
3: ये वो आवाज़ें हैं कि अगर आप इनको देख नहीं रहे, अगर सिर्फ सुन भी रहे हैं ना, तो भी महसूस कर सकते हैं.
0: You can feel those dialogues, you know, you can picturize the whole movie in front of you when you're listening to these dialogues.
3: और अब एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जो देखने में भी अच्छा दिखता है अभिनय में.

0: और बातें भी अच्छी करता है
1: जी बिल्कुल एंड नवीन व्हेन वी टॉक ऑफ हिंदी आर्ट हाउस सिनेमा स्पेसिफिकली सम नेम्स इमर्ज एज द मोस्ट पॉपुलर फेसेस अगर कुछ नामों की हम बातें करें तो ओम प्रकाश हैं नसीरुद्दीन शाह हैं एंड नॉट टू फॉरगेट Pankaj Kapoor, who is an Indian theatre, television and film actor, and today is his birthday. Pankaj Kapoor is hugely gifted and is widely respected for his commitment to good cinema. He has carved a niche for himself with his versatility and creative endeavours. And here, we are going to listen into his powerful concluding monologue as a pandit from the 2000 movie Dharm.
2: आज हमें ज्ञात हुआ धर्म केवल साधना नहीं कर्तव्य भी है कर्म भी है एकता और सद्भावना है भेदभाव को त्यागना है धर्म मानवता है धर्म
0: आज मैं और रेनू जब हिस्ट्री का सेक्शन खोज रहे थे तो हमें एक ऐसे गीतकार पर नजर पड़ी जिसके गीत दिल को छू लेते हैं इतने खूबसूरत गीत और इतने सीधे साधे गीत कि आप दिन भर गुनगुनाएंगे बात हम कर रहे हैं योगेश की जिन्होंने आनंद का ये खूबसूरत गीत लिखा कहीं दूर जब दिन ढल जाए

योगेश जी के लिखे गीत सीधे दिल में उतरते थे और रेनू उनके गीतों में बनावट नहीं, आम इंसान का सीधा साधा जीवन झलकता था। चाहे वो ये फिल्म आनंद का ये गीत हो या रजनीगंधा का कई बार यूं भी देखा है।

0: कहते हैं कि फिल्म आनंद के लिए जब ऋषिकेश मुखर्जी को गानों की जरूरत थी तो रेणु गुलजार साहब ने उन्हें योगेश का नाम सुझाया। ऋषिकेश जी ने योगेश को बुलाया, फिल्म की कहानी सुनाई और कहानी सुनकर योगेश जी इतने प्रभावित हुए कि वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने कुछ लाइनें लिख दी और वो लाइन थी, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए।
1: कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: और दोस्तों जानते हैं जब बारिश के गीतों की बात होती है तो बहुत से गीत आपके जहन में आते होंगे, लेकिन योगेश का लिखा ये गीत आज भी उतना ही पॉपुलर है जिस वक्त वो लिखा गया था। तो मैं और रेणु इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस गीत को सुनिए, दिन भर गुनगुनाइए और उम्मीद करिए कि आपके शहर में तो सावन जरूर गिरे।

0: उम्मीद है कि आपको आज का संस्करण बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही।
1: एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM एंड हैव अ सुपर्ब डे डियर लिसनर्स।
0: नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते।

भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावले

0: निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
3: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटन्स पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर वुड सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन अ ईयर.

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். அதனைத் தொடர்ந்து விஸ்வதர்பன் மற்றும் வேர்ல்ட் நியூஸ் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों के लिए जांच की गठित समिति उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

0: सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees.
2: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
1: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief and Kewal Singh Dhillon will be the new President of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been appointed as Tripura BJP President. Air India's extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official said that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia conflict, airlines have been facing multiple headwinds, including costlier

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने फीफा विश्व कप 2026 से पहले इबोला वायरस संक्रमण के मद्देनजर यात्रा संबंधी प्रतिबंध जारी किए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ सकता है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता

0: आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में गोलमेज बैठक में भाग लिया। उन्होंने 50 से अधिक व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं से बातचीत की। ये बैठक भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी मंच के सहयोग से आयोजित की गई थी। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने बैठक में भारत की मजबूत आर्थिक विकास स्थिति, सुधार आधारित व्यापार माहौल और वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते अवसरों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आर्थिक सुधार तेजी से हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में सैन्य ठिकाने पर हमला किया। हालांकि अमरीका ने कहा है कि उसने मिसाइल और ड्रोन को नाकाम कर दिया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान में कार्रवाई की है। अमरीका का कहना है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। बढ़ती सैन्य कार्रवाई से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर अनिश्चितता बढ़ गई है। अमेरिका के विदेश विभाग ने ब्राजील के 2 बड़े आपराधिक गिरोहों फर्स्ट कमांड ऑफ द कैपिटल यानी पीसीसी और रेड कमांड यानी सीवी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। विशेषज्ञों के अनुसार इन दोनों गिरोहों के कुल सदस्यों की संख्या 50,000 से अधिक हो सकती है। ट्रंप प्रशासन लैटिन अमरीका में ड्रग तस्करी और संगठित अपराध पर सख्ती के तहत इस तरह के कदम उठा रहा है। अमरीका के डलास शहर में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में हुए भीषण विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। डलास फायर रेस्क्यू के प्रवक्ता जेसन इवांस ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला संक्रमण के बीच अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और यात्रा उपायों पर एक संयुक्त बयान जारी किया है। तीनों देशों ने कहा है कि ये समन्वित कदम नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान आने वाले लाखों पर्यटकों, खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जबकि सीमाओं पर यात्रा और व्यापार जारी रहेगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इबोला को देश में फैलने से रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उधर पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा ने इबोला के प्रसार को रोकने के लिए बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घिब्रेसस ने कहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला प्रकोप बेहद जटिल स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में संघर्ष, असुरक्षा, लोगों का विस्थापन, खाद्य संकट और सामुदायिक अविश्वास जैसी समस्याएं संक्रमण नियंत्रण के प्रयासों में बड़ी बाधा बन रही है। श्री टेड्रोस ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रभावित समुदायों को यह संदेश देना है कि वे अकेले नहीं है और WHO उनकी सहायता के लिए मौजूद है। WHO की टीमें पहले से ही पूर्वी इटोरी प्रांत के बुनिया क्षेत्र में काम कर रही हैं। अब तक प्रकोप में

0: 1000 से अधिक संदिग्ध मामले और 238 संदिग्ध मौतें दर्ज की गई हैं। 17 मई को WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी इसे महाद्वीपीय आपात स्थिति बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 से 2030 के बीच वैश्विक औसत तापमान के वर्ष 1850 से 1900 के स्तर से 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: रिपोर्ट में बताया गया है कि 86% संभावना है कि इस अवधि में कम एक वर्ष अब तक के सबसे गर्म वर्ष 2024 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार 2026 के अंत तक अलनीनो परिस्थितियां बनने की संभावना है, जिससे 2027 में रिकॉर्ड गर्मी का खतरा बढ़ सकता है। पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इससे अधिक वृद्धि पर गंभीर जलवायु प्रभाव की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने चेम्सफोर्ड में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की है। दूसरा मैच कल ब्रिस्टल में भारतीय समय के अनुसार रात 7 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। अमरीका, मैक्सिको और कनाडा ने फीफा विश्व कप 2026 से पहले इबोला वायरस के संक्रमण के मद्देनजर यात्रा संबंधी प्रतिबंध जारी किए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हो सकती है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को हराया है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुनील वर्मा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. United States, Mexico and Canada issue travel measures in wake of Ebola virus outbreak ahead of FIFA World Cup 2026. World Meteorological Organization says global temperatures likely to hit near record highs over next 5 years. And in cricket, Indian women's team beat England by 38 runs in first T20 international to take 1-0 lead in 3-match series. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
4: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security, and he felt that this is something for which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of state-sponsored terrorism.
3: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Doval participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow. On the sidelines of the forum, Mr. Doval held a meeting with his Russian counterpart, Shoigu. During the meeting, the parties reviewed the current state of cooperation in the areas of defense, security, energy and trade economic ties. Air India has extended suspension of its flight to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official said that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

0: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: புன்னகை மன்னன் திரைப்படத்திற்காக வாணி ஜெயராம் பாடியுள்ள பாடல்.

0: நேயர்கள், இதுவரை கேட்டு ரசித்தது 100.1 MHz FM கோல்டு வழங்கிய சுகமான ராகங்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड

दंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 100.1 MHz FM Gold வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் திரைக்கானத்தில் இனி ஆலயமணி திரைப்படத்திற்காக டி எம் சவுந்தரராஜன், எல் ஆர் ஈஸ்வரி பாடியுள்ள பாடல். பாடல் ஒலிக்கும் நேரம் 12:15.

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है।

ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस हुर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया।

0: την ακλατά. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।

ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारे

0: वाले क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: நேரம் 2:30 ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட் அலைவரிசை இது.

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारी

0: अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश की दो दिन की यात्रा के दौरान आज श्री सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश के लिए अधिक निधि आवंटन के प्रयासों का आश्वासन दिया।
1: अभी हमने एक धर्मावरण में अप्रूव किया है क्लस्टर और कल मैं विशाखापट्टनम में ग्लास फाइबर के एक यूनिट का उद्घाटन भी करूंगा और भारत सरकार ने 10,860 करोड़ का PLI दिया है टेक्सटाइल को। आंध्र अधिक से अधिक शेयर ले, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइटों से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से संबंधित मनगढ़ंत दावे और ईरान अमेरिका मध्यस्थता के बारे में टिप्पणियां शामिल हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावा किया है कि ये AI से बनाया गया है। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, emphasizing that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi said that orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities

0: வந்துடும். அதோட கூடுதல் மின்சார உற்பத்தி செஞ்சா அதை வித்து நீங்க சம்பாதிக்கலாம். இன்னும் ஏன் உட்கார்ந்திருக்கீங்க? இப்போதே PM Suryaghar.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
3: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है. आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं.
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.
4: துவக்கமாக தெற்கு தெரு மச்சான் திரைப்படத்திற்காக S. ஜானகி பாடியுள்ள பாடல்.

0: निरेवाग।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: के अधीन स्वायत्त संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जेनोमिक संस्थान में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदनाम है सहायक प्रोफेसर, पदों की संख्या 6 है जिनमें से 3 पद अनारक्षित हैं, 1 पद ओबीसी, 1 पद एससी और 1 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इच्छुक पात्र उम्मीदवार विस्तृत विवरण देखने के लिए देख सकते हैं वेबसाइट apply.nibmg.ac.in। यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो इस ईमेल पर अपनी जिज्ञासा प्रेषित कर सकते हैं 2026 फैकल्टी रिक्रूटमेंट @nibmg.ac.in। आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आंध्र विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के संकल्प और सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या MS 54 के अनुसार विश्वविद्यालय में 523 रिक्त शिक्षक पदों को भरने के लिए पहले दी गई अनुमति रद्द कर दी गई है। इसलिए इन पदों को भरने के लिए दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को जारी और दिनांक 1 नवंबर 2023 को प्रकाशित शिक्षक भर्ती अधिसूचनाएं वापस ले ली गई हैं। 2023 की अधिसूचनाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क की वापसी संबंधी जानकारी के लिए ये सलाह दी जा सकती है कि वे विश्वविद्यालय की इस वेबसाइट को देख सकते हैं www.andhrayuniversity.edu.in। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पदों की संख्या 2, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पीपीपी परियोजनाएं पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण पदों की संख्या 1, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर सड़क कार्य 1 पद, प्रोजेक्ट मैनेजर इमारत 2 पद और प्रोजेक्ट मैनेजर पर्यावरण 1 पद। विस्तृत विज्ञापन, निर्धारित आवेदन प्रारूप और संपूर्ण नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास लिमिटेड की वेबसाइट www.dsiidc.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम परिक्रमा में। आप सभी का स्वागत एक और अंक में, हार्दिक अभिनंदन भी आप सभी का। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज उनके पास कौन कौन सी खास रिपोर्ट्स हैं, और खेल के मैदान की गतिविधियों की भी हम आपको जानकारी देंगे, साथ ही आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी हमारी नज़र रहेगी। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन का हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
2: वेल हेलो, गुड डे एवरीबॉडी, दिस इज शगुन चोपड़ा विद विशाल शर्मा टुडे एंड यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम एंड बोथ ऑफ अस वी आर रेडी एंड वी आर थ्रिल्ड एंड वेरी मच एक्साइटेड टू बिगिन आवर प्रोग्राम एंड विशाल टोल्ड यू अबाउट द होल प्रोग्राम द सेगमेंट्स एंड एवरीथिंग वी हैव

0: two topics that we will be discussing in our discussion segment, which is Dateline India. And all of this, all of the things that we told you, these will be over the next 30 minutes. You have to stay tuned, so don't go anywhere. Just keep listening to us. First, let's begin with the headlines.
1: जी, मुख्य समाचारों पर नजर डाल लेते हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है.
0: Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students.
1: PM Surya Ghar Yojana ko mahatvapurna uplabdhi hasil. Yojana ke antargat 40 lakh makanon ki chhat par solar panel lagaye gaye.
0: IMD predicts below normal monsoon rainfall over country and above normal heatwave conditions in several states during June.
1: हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता.
0: सो नाउ दिस इज आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया. लेट्स बिगिन बाय डिस्कसिंग द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे. Well, today it's actually a very special day for all adventure lovers and dream chasers out there because
1: आज अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है, जैसे कि शगुन ने आपको बताया. और हर साल 29 मई को पूरी दुनिया इस दिवस को मनाती है. ये दिन साहस, दृढ़ संकल्प और खोज की अद्भुत भावना को समर्पित है.
0: Very true. When we hear the word Everest, we instantly think of snow-covered peaks, well, freezing winds and one giant challenge standing tall above the clouds.
1: जी, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 1953 में दो महान पर्वतारोहियों, न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट पर की गई पहली ऐतिहासिक सफल चढ़ाई की याद में मनाया जाता है.
0: So the recognition of Everest as the highest mountain, it came in the mid-19th century. In 1856, the Great Trigonometrical Survey of India established its height and named it Peak 15. So later, in 1865, this peak was officially named Mount Everest in honor of Sir George Everest, a former Surveyor General of India. So this discovery marked a significant milestone in the field of geography as well as in the field of exploration.
1: शगुन ने ज्योग्राफी की बात करी तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की महालंगुर हिमाल उपश्रृंखला में स्थित है, जो नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर फैला हुआ है. नेपाल की ओर से शिखर तक पहुंचने के लिए दक्षिणी चढ़ाई मार्ग का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है. ये क्षेत्र अपने ऊबड़ खाबड़ भूभाग, शानदार चोटियों और मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है, और इसीलिए ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों के लिए ये आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है.
0: Well, yes, I can visualize the whole scene, the mountainous terrain, and you can also imagine the determination that it must have taken, Vishal. No advanced technology, no fancy gear like today, just courage, preparation and the will to reach the top of the world.
1: ये इच्छा शक्ति और साहस के बल पर ही और तैयारियों के बल पर ही और मेहनत करके ही माउंटेनियर्स वहाँ पहुँचते थे. तब इतनी हमारे पास, जैसे आपने भी कहा, कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. और शगुन, वो क्षण कितना अद्भुत होता होगा जब बेहद खराब मौसम और खतरनाक रास्तों से जूझने के बाद माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊँची पर्वत चोटी पर पहुँचने का अनुभव.
0: Oh wow. And Everest isn't just about mountains, it is actually a symbol of overcoming challenges in life as well. Yeah. Right, moving mountains as we say, and everyone has their own Everest to climb, right?
1: जी बिल्कुल, चाहे परीक्षा हो या करियर के लक्ष्य हो, फिटनेस का सफर हो या फिर निजी संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हमें याद दिलाता है कि लगन हमें असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है.
0: And I'm even thinking about it right now. The areas of improvement in my own life as well, while we are presenting our program and discussing about it. And today, actually, trekkers, climbers, mountaineers, adventure enthusiasts across the globe, they celebrate this inspiring achievement and honor the spirit of exploration.
1: जी, और यहाँ एक मजेदार सवाल हमारे श्रोताओं से भी, और शगुन ये सवाल आपसे भी है.
0: Yeah,
1: कि अगर आप दुनिया के किसी पहाड़ पर चढ़ने की सोचती हैं तो कौन सा होता वो पहाड़?
0: Well, I actually already know mine, somewhere scenic, beautiful, that mountainous, rugged terrain, but maybe not too dangerous. Not too dangerous. I'm not that adventurous.

0: I'd like to come back alive. Thank you very much.
1: एवरेस्ट यकीनन कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो
0: True.
1: तापमान होता है वो जमाव बिंदु से भी काफी नीचे पहुंच जाता है और ऑक्सीजन का स्तर भी खतरनाक रूप से कम होता है। और हर कदम एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय इंसान की सहन शक्ति का कड़ा इम्तिहान लेता है।
0: It is, I can imagine the hard work and the courage which is involved here, and yet year after year, adventurers, they continue to take on this challenge and they prove how powerful human determination truly is. We can move mountains then,
1: तो
0: or reach
1: आज
0: the peaks.
1: जी जी तो हम एक पर्वत शिखर नहीं बल्कि उस निडर जज्बे का भी जश्न मना रहे हैं जो लोगों को बड़े सपने देखने और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है।
0: So, to our listeners and everyone, happy International Everest Day. Keep climbing your own peaks and never, ever, never, ever stop believing in your journey. So now, should we move on? It's also International Day of UN Peacekeepers, very important global observance. The International Day of United Nations Peacekeepers, commemorated every year on 29th of May, today.
1: ये दिन उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने दुनिया भर में शांति बनाए रखने के प्रयासों के दौरान अपनी जान गंवा दी और साथ ही उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है जो साहस, समर्पण और पेशेवर दक्षता के साथ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं।
0: So let's tell our listeners that the first UN peacekeeping force, the United Nations True Supervision Organization, began operations in the Middle East on this date, 29th of May. The year was 1948.
1: शांति स्थापना का भविष्य विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय यूएन पीसकीपर्स दिवस पिछले लगभग 8 दशकों में सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति रक्षकों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान पर प्रकाश डालता है। ये अपने आप में एक अधिक समतापूर्ण, न्यायसंगत और टिकाऊ, सस्टेनेबल दुनिया के निर्माण की दिशा में प्रगति और सामूहिक प्रयासों की भावना को भी समाहित करता है।
0: And Vishal, more than 68,000 civilians, military, police personnel serve in 11 UN peacekeeping missions, confronting increasingly complex and interconnected challenges shaped by a shifting geopolitical landscape. And they also have to keep sustainable development in mind. And despite the challenges, peacekeepers remain steadfast in their pursuit of peace.
1: बिल्कुल। और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति रक्षकों की अटूट सेवा और बलिदान के साथ साथ इस कार्य में सहयोग देने वाले समुदायों के जुझारूपन को भी श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है। इसके अलावा ये उन 4,400 से अधिक शांति सैनिकों को भी पूरी श्रद्धा के साथ सम्मानित करने का अवसर है जिन्होंने शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शांति स्थापना के इस महत्वपूर्ण कार्य में वर्ष 2024 में ही 57 सैनिकों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है।
0: So UN peacekeeper, the word itself suggests, and we often imagine soldiers standing guard in conflict zones, right? This is what we can visualize easily. But UN peacekeepers, it is they do so much more than that.
1: जी। और वे नागरिकों की रक्षा करने, युद्ध से प्रभावित समुदायों को सहारा देने, मानवीय प्रयासों में सहायता करने और यहाँ तक कि संघर्ष के बाद देशों के पुनर्निर्माण में भी मदद करते हैं। शांति सैनिक युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में आशा की एक नई किरण बनकर पहुंचते हैं।
0: So peacekeepers come from many different countries around the world, work and they work together under the United Nations flag, and this is truly a global effort for peace.
1: और हमारा देश भारत भी संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में बढ़ चढ़कर शामिल होता रहा है। पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में भारत का योगदान सबसे अधिक रहा है। हजारों भारतीय सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने दुनिया भर में चलाए गए अभियानों में असाधारण शौर्य के साथ अपनी सेवाएं दी हैं।
0: So, let's also tell our listeners that two Indian peacekeepers, they will be honored posthumously by the United Nations for their ultimate sacrifice in the line of duty on the International Day of UN Peacekeepers today. Lance Havildar Harbhajan Singh, who served with the United Nations Organization Stabilization Mission in Congo, and Naib Subedar Sujit Kumar Pradhan, who was deployed with the UN mission in South Sudan, will be posthumously honored by the UN Secretary General Antonio Guterres with the prestigious Dag Hammarskjöld Medal for their sacrifice in the line of duty. So additionally, Mr. Guterres

0: Harris will present the 2025 Military Gender Advocate of the Year Award to Major Abhilasha Barak of India, who serves on the UN Interim Force in Lebanon, honoring her outreach efforts with women and girls during her deployment in the West Asian nation. It makes us proud, right?
1: जी, तो आइए हम सभी एक क्षण के लिए उन सभी साहसी व्यक्तियों का सम्मान करें जो शांति के झंडे तले मानवता की सेवा करना जारी रखे हुए हैं.
0: And let us remember, peace is not just the absence of war, it is the presence of compassion, unity and hope.
1: आइए एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें. और कार्यक्रम में अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट्स उनके पास हैं. और इस कड़ी में सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं शगुना?
0: एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो टुडेज एडिशन ऑफ परिक्रमा हाईलाइट्स द रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ टू डॉटर्स ऑफ झारखंड हु हैव मेड द एंटायर नेशन प्राउड थ्रू देयर डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड एकेडमिक एक्सीलेंस. Let's hear that in detail in this report.
2: In the recently declared CBSE and ISE Class 12 examination results, two meritorious students from Jharkhand secured the top rank at the national level and created history. First, let's talk about Shambhavi Tiwari from Jamshedpur. A bioscience student of Sacred Heart Convent School, Jamshedpur, Shambhavi scored a perfect 100% in the ISE Class 12 examination to emerge as a national topper. Staying completely away from social media and maintaining a focused routine, she now aspires to become a doctor and serve the underprivileged sections of society.
3: बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए. अच्छा रिजल्ट तो मैंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन इतना अच्छा होगा ये नहीं सोचा था. मेनली मैं मेडिकल की तैयारी करती थी, मतलब नीट की, तो उसी तरह से मैंने पढ़ाई की और स्कूल के टीचर्स को भी फॉलो की. 5-6 घंटे में पढ़ाई करती थी स्कूल के टाइम पे, वापस आके बुक्स वगैरह जो नोट्स है वो पढ़ती थी.
2: द सेलिब्रेशंस वर नॉट लिमिटेड टू जमशेदपुर अलोन एज रांची टू विटनेस्ड अ प्राउड मोमेंट. भाव्या रंजन एन आर्ट स्टूडेंट ऑफ Oxford Public School Ranchi secured 499 out of 500 marks in the CBSE Class 12 examination. With an outstanding score of 99.8%, Bhavya became a national topper and now dreams of joining the civil services to contribute towards nation building and public service.
4: National topper मैंने कभी नहीं सोचा था. काफी खुशी हो रही है, बहुत proud moment है मेरे लिए, मेरे parents के लिए, everyone involved in this journey. Hard work करना चाहिए, अपने efforts को कभी vain में नहीं जाने देना and सबसे ज्यादा important है अपने आप में believe करना. They have to dream. आप ड्रीम करोगे तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे. ग्रेजुएशन में मैं हिस्ट्री लेना चाहती हूँ एंड मेरा टारगेट है कि मैं यूपीएससी सीएससी क्रैक करूँ.
2: Shambhavi and Bhavya have emerged as inspiring role models for students across the country. Their achievements reaffirm that sincerity, determination and hard work can turn even the biggest dreams into reality. For Parikrama, this is Mahvish Rahman from Ranchi.
1: झारखंड के बाद अब लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर में और यहाँ एक बहुत ही अनूठी पहल की जा रही है. महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में आपदा प्रबंधन में मदद के लिए पहली बार ट्रांसजेंडर्स का एक दल प्रशिक्षित किया जा रहा है. मॉनसून के मद्देनजर तैयार की जा रही ये टीम शायद देश में अपनी किस्म की पहली टीम होगी. जिला प्रशासन को उम्मीद है कि ये दल किसी भी आपत्ति के समय मदद के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है. और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पुणे संवाददाता.
5: इस टीम में 10 ट्रांसजेंडर सदस्य शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से मैत्री संगठन की मयूरी अलवेकर, शिवानी गजबर, जोया दिन्नी आदि शामिल है. इन सभी को राजाराम झील में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई है. उन्हें मोटर बोट चलाना, डूबते हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना, प्रभावित व्यक्ति को होश में लाना और फर्स्ट एड देना सिखाया गया है. जिला कलेक्टर डॉक्टर विजय राठौड़ और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर प्रसाद संगपाल के मार्गदर्शन में देश स्तर पर यह अपनी तरह का पहला ऐसा नवीनतम प्रयोग है. जिला आपदा प्रबंधन के हिस्से के रूप में उनकी टीम बनाई गई है और इस टीम की ट्रेनिंग अभी चल रही है. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी प्रसाद संगपाल ने कहा कि ये देश में ट्रांसजेंडर्स की पहली ऐसी टीम है. कोल्हापुर जिला प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लगभग 2500 युवाओं की एक टीम तैयार की है. इनमें 500 से ज्यादा युवतियां हैं. ये जवान लड़के लड़कियां बाढ़, तूफान, हादसा और अलग अलग आपदाओं या जरूरत के दूसरे हालात में मदद के लिए आते हैं. ये टीम बिना किसी मानदेय या तनख्वाह के काम कर रही है. अब कोल्हापुर में इस काम के लिए ट्रांसजेंडर की एक टीम भी तैयार की गई है. प्रसाद सपकाण

0: Well, after that, tributes to Yogesh Gaur, the unsung lyricist of Hindi films. Well, he harbored a passion for poetry at a very young age. So, and he in Yogesh got his first break as a lyricist with the film Sakhi Robin in 1962.
1: और शगुन विशेष रूप से फिल्म आनंद के गीतों के लिए इनको खास तौर पर जाना जाता है और इतने बेहतरीन इन्होंने गीत लिखे आनंद फिल्म के और बहुत ही हिट भी हुए सुपरहिट भी हुए ये गाने आइए सुनते हैं इस आनंद फिल्म के उनके लिखे कुछ गीत

0: कितनी बड़ी दार्शनिक बात कही, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। और अब बात,
1: वेल वी ऑल्सो हैव, ही पेन द लिरिक्स ऑफ अदर मीनिंगफुल सॉन्ग्स एज वेल एंड सोल स्टरिंग सॉन्ग्स एज वेल एंड अनदर सॉन्ग दैट आई रियली लव लिसनिंग टू, कहीं दूर जब दिन ढल जाए।

0: टुडे लिसनर्स, इट्स आल्सो पंकज कपूर्स बर्थडे।
1: जी, पंकज कपूर एक ऐसे कलाकार जो कभी पारंपरिक हीरो नहीं कहलाए बल्कि अपनी बेहतरीन अदाकारी से बड़े बड़े सितारों पर भारी पड़ गए।
2: सितारे टिमटिमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें कोई संदेश भेज रहे हो, मैसेज या चैलेंज दे रहे हो, कह रहे हो तुम लोग अपने छोटे से ग्रह में रहकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, वक्त पर बात करते रहते हो, हमारी तरफ देखो, हमें समझने की कोशिश करो। इस विश्व लोक के असीम रहस्य को कितना जानते हो।
1: और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे यहीं अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए विशाल और शगुन को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।
3: நேரம் 5 மணி, ஆகாஷ்வாணி

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और

0: स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05 ஆகாஷ்வாணி
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
2: இனி நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்கும் முன்
4: பர்சனல் லோன் ஆஃபர்
5: மறுபடியுமா? இதையும் பிளாக் பண்றேன்.
4: துபாய்க்கு ஃப்ரீ ட்ரிப்
5: இதையும் பிளாக் தான். எவ்வளவு நம்பர்ஸ் தான் பிளாக் பண்றது?
6: போன்ல பிளாக் பண்றது மட்டும் ஸ்பேம் ஸ்டாப் பண்ணாது. ஒவ்வொரு தடவையும் புது நம்பர்ல இருந்து கால் வரும்.
5: அப்ப நான் என்ன பண்றது?
6: கால் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு ட்ராய் டிஎன்டி ஆப்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. கேட்டகரியை செலக்ட் பண்ணுங்க, பேங்கிங், டிராவல், இன்சூரன்ஸ். அப்புறம் சப்மிட் பிரஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும்.
5: இதனால எல்லாருக்கும் ஸ்பேம் கம்மி ஆகுமா?
6: ஆமா, ரிப்போர்ட்ஸ் வந்த உடனே ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க.
7: ஜஸ்ட் பிளாக் பண்ணாம ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. ட்ராய் டிஎன்டி ஆப் இப்பவே பிளே ஸ்டோர் இல்ல ஆப் ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ரிப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
8: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
9: பிரதமர் எல்லா வீடுகளும் மின்சாரம் தயாரிக்கணும்னு விரும்புகிறார். அதை வித்து சம்பாதிக்கவும் சொல்கிறார். பிரதமர் தொடங்கிய இந்த சூரிய புரட்சியின் மாற்றம் இப்போது தெரிய தொடங்கியுள்ளது. இந்தியாவின் 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் தங்கள் வீட்டு மாடியில் சோலார் பேனல் பொருத்தியுள்ளன. நீங்களும் இந்த எரிசக்தி புரட்சியில் இணையுங்கள். இப்போதே PM சூரியகர் .gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள்.
2: இனி நிகழ்ச்சி நிரல். இந்த அலைவரிசையில் இன்றும் நாளையும் இடம்பெற உள்ள நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய அறிவிப்பு. இன்று மாலை 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா, 7:10 இளைய பாரதம், கிளார்க்ஸ், நட் கிராக்கர், டைனி விங்ஸ், ஜெயண்ட் இம்பாக்ட், ஹெச் நிடா ஃபாத்திமா வழங்கும் முறை, கிரீன் ரெசிலியன்ஸ், எஸ் பத்மபிரியா வழங்கும் முறை, ப்ரீத் ஈஸி, லைஃப் ஈஸி, வேர்ல்ட் நோ டுபாக்கோ டே, ஆர் பிரபாகரன் வழங்கும் முறை,

பணியே.

0: Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, friends, I'm your anchor Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Amit Goel.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नज़र डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन. सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नज़र आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा.
0: थैंक यू अमित. यस, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस शेड अराउंड 1.5%. सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 1,100 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 23,600. Robust macroeconomic fundamentals will support growth trajectory of Indian economy in current fiscal year despite headwinds, says RBI in its annual report. And global crude oil prices decline.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में लगभग 1.5% की गिरावट. सेंसेक्स लगभग 1100 अंक लुढ़का. निफ्टी 23,600 के स्तर से नीचे दर्ज. रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बाधाओं के बावजूद मजबूत बुनियादी आर्थिक परिदृश्य के समर्थन से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी का रुझान रहेगा. और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट.
0: Before we move on any further, here's a disclaimer, friends. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.

0: खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले शेयर बाजार घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग सभी बड़ी कंपनियों में आज गिरावट रही। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1.3% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में हुई बढ़त कारोबार के अंतिम आधे घंटे में बड़ी गिरावट में बदल गई।
1: Benchmark domestic equity indices shed around 1.5% today. The BSE Sensex plunged 1,092 points to close at 74,776. NSE Nifty fell 359 points to settle at 23,548. The broader market at the National Stock Exchange mirrored the fall in the frontline indices. The mid-cap 100 index lost over 1.3% and the small-cap 100 index dropped more than 0.8%. Earlier today, markets reversed their initial gains by midday, with both benchmark indices trading in negative territory amid looming geopolitical uncertainties. The sell-off deepened during the final half an hour of trade, pushing both indices towards the lowest points of the day.
0: सेंसेक्स पैक की 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में आज बड़ी गाज गिरावट रही। नुकसान वाले प्रमुख शेयरों में पावर ग्रिड 3.5%, इंडिगो 3.3%, एनटीपीसी 2.9% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि टेक महिंद्रा लगभग 2%, एचसीएल टेक 1.6%, लार्सन एंड टूब्रो 0.8% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। इन्फोसिस में भी मामूली बढ़त दर्ज हुई।
1: In the sectoral indices at the BSE, 22 out of 25 sectors succumbed to selling pressure. In the top laggards, oil and gas plunged more than 2.7%, metal shed 2.3% and utilities fell over 2.2%. Conversely, focused IT surged 0.5%, IT gained over 0.4% and telecommunication rose 0.4%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,599 companies declined, 1,670 advanced and 194 remained unchanged. And rupee.
0: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 99.1 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। सुषमा, बाजार में शुरुआती बढ़त अंत होते बाद कारोबार के अंत होते होते वो गिरावट में बदल जाती है, क्या भरोसे की कमी है या जो छोटी सी भी अगर तेजी आती है तो निवेशक वहां पे मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं या कुछ और खबरें हैं जो शायद आम लोगों तक या आम निवेशक तक नहीं पहुंच रही?
2: मेरे ख्याल में आजकल हमें ये एक्सटर्नल इश्यूज के ऊपर ज़्यादातर गौर करना चाहिए, क्योंकि इनका जो असर है वो ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टॉक मार्केट्स को। और आजकल जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है उसके उसको नज़र में रखते हुए सारी स्टॉक मार्केट, सारी शेयर बाज़ार जो है वो उन्हीं के ऊपर की नज़र रखी हुई है। और कल से ये खबर आ रही थी कि भाई कुछ अग्रीमेंट होने जा रहा है यूएस और ईरान के बीच में, कोई फ्रेमवर्क अग्रीमेंट आ रहा है, लेकिन उसका कुछ शायद कुछ हर्डल्स आ गए और उसकी जो खबर आई मेरे ख्याल में ये जो लास्ट जैसे आपने कहा ट्रेडिंग आवर्स में तो उससे मार्केट नीचे गई। और हालांकि आपको आपने खुद ही ये अपनी खबरों में बताया कि तेल के दाम जो हैं वो कम हो गए हैं। तेल के दाम इसलिए कम हुए हैं क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि भाई ये जो वॉर है वो शायद ख़त्म हो जाए। तो और भी मुद्दे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, वो तो है, लेकिन वो कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम है। लेकिन आज की जो मेरे ख्याल जो अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, जो वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में हुई है, वो ज़्यादातर इसी वजह से है कि वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट का अभी कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है।
1: To be very specific, it's the Strait of Hormuz. It's also the Iran-US agreement. Is uncertainty the new norm, Sushma, that we have to adjust to? And second question would be that are the global factors so strong that they're overriding any domestic factor?
2: Yes, for the time being, yes. Actually, in the Indian stock markets, we have had a period

0: it has to be, you know, we have to be careful in the future, given the fact, as you as you rightly mentioned, the geopolitical tensions. But for, you know, for the immediate short term, there is no crisis because we have adequate inventories. Last year's harvest of both Kharif and Rabi was good. We have to, of course, be concerned about the prospect of having perhaps a scanty monsoon this year, which could affect the crop. Now, but even though we are looking at this prospect, the Med Department has said this, but even then, as I said, for the time being, the short-term outlook is that, we have enough inventory. So I think the food security per se, we do not have a problem. I think where we need to be concerned about is probably in managing the other food items, such apart from wheat and rice. Because, you know, we have this great focus on wheat and rice. So mm-hmm. we have sufficient inventories of them. But we need to focus on increasing productivity of pulses, which we are importing.
1: Yes.
0: We need to improve productivity of edible oil seeds because we are importing edible oils. In fact, that's a huge component of our import bill.
1: Mm-hmm.
0: So these are the areas that we need to focus on rather than worry about wheat and rice. And that's what people talk about in terms of food security. You know, you have enough wheat and rice. Yes, we have enough wheat and rice.
2: Sushma, lekin agar Reserve Bank apni annual report mein ye kehta hai ki aarthik sthiti mazboot hai aur agar balance sheet ko bhi dekhte hain to balance sheet takriban 20% badhti hai
0: ji
2: aur saath ke saath Reserve Bank ka ye aaklan ki hamara jo gharelu aarthik paridrashya hai wo hamari growth की जो स्टोरी है उसको इंटैक्ट रखेगा उसको आगे ही बढ़ाता रहेगा ये कितनी उम्मीदें जगाता है और क्या इस रिपोर्ट के माध्यम से हम इसका जो असर है वो शेयर बाजार पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा हमें आगे हमें आने वाले दिनों में क्योंकि अगर रिजर्व बैंक मजबूत है उसकी रिपोर्ट मजबूत है तो ये तो मानना चाहिए कि हमारी आर्थिक परिदृश्य बहुत अच्छा है
0: देखिए ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन जैसे ये लालिमा ने भी यही सवाल पूछा कि ये अगर आप फंडामेंटल्स पे जाएं अब इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे और ये स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर नीचे जा रहा है तो स्टॉक मार्केट हमेशा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर नहीं जाता है स्टॉक मार्केट कई बहुत दूसरे मुद्दे पे जाता है हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इस वक्त हालांकि वेस्ट एशिया का क्राइसिस इतना है जो अप्रैल के जो डेटा आई है इतनी अच्छी आई है हालांकि हो सकता है मई का इतना अच्छा ना आए लेकिन अप्रैल की डेटा ये है कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स के जो कलेक्शंस हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे हैं आपके पैसेंजर व्हीकल सेल्स के जो सेल्स हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे हैं तो कंजम्पशन बढ़ गया है हर चीज का तो इतना पॉजिटिव अच्छा डेटा आया है मई में अप्रैल के बारे में अब आगे देखना है कि मई कैसे है लेकिन स्टॉक मार्केट इसको कोई तवज्जो नहीं देता है वो एक
2: बट लेकिन अगर रिजर्व बैंक की जो बैलेंस शीट इतनी अगर मजबूत है
0: हाँ।
2: तो कम से कम हमारे पास ये मानने का तो पर्याप्त कारण है और आधार है कि हमारी आर्थिक स्थिति तो निश्चित तौर पे बेहतर रहेगी और आर्थिक बढ़ोतरी जो है वो निरंतर चलती रहेगी
0: वो तो ठीक है लेकिन इसका जो असर है वो ज्यादातर डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स पे है और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स ने हमारी इसी ग्रोथ स्टोरी के ऊपर अपना ये स्टॉक मार्केट में अपना फेथ डाला है और वो डालते रहते हैं सिर्फ FIIs जो है वो इतने इंप्रेस नहीं है
1: यस यस यू आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन ओनली इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्लाइन बाय 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स स्टैंडिंग एट 681 बिलियन यूएस डॉलर्स फॉर द वीक एंडिंग मई 22 अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड रिजर्व्स डिक्लाइन बाय 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स टू ओवर 114 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड फॉरेन करेंसी एसेट्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द रिजर्व्स डिक्रीज्ड बाय 2.87 billion US dollars to 543 billion US dollars during the week.
2: मौसम विभाग ने देश भर में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है नई दिल्ली में आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एम रविचंद्रन ने बताया कि देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होने वाली वर्षा का पूर्वानुमान 90% रहने की संभावना है शायद अगर बारिश कम होती है उसके बावजूद भी इतनी कमी तो नहीं है जो शायद चिंता का सबब अभी

0: फिलहाल बन
1: नहीं, जनरली क्या होता है कि ये इतना जब भी ऐसे कोई फोकस आता है हम बहुत चिंता करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो उत्पादन है वो काफी अच्छा रहता है। तो अभी देखना है इस साल क्या होगा।
0: नजर डालते हैं एशिया यूरोपीय बाजार पे। एशिया बाजारों में तेजी का दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.5%, जापान का निकेई 2.5%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 1% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.7% की बढ़त से बंद हुआ। हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.7% की गिरावट भी नजर आई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिलाजुला दौर रहा। लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक जहां 0.2% से 0.7% तक की बढ़त के दायरे में नजर आए, वहीं जर्मनी के शेयर बाजार में 0.2% की गिरावट नजर आई।
2: Major US stock indices closed at record highs yesterday, driven by gains in technology shares and reports that American and Iranian negotiators had agreed on the framework for a memorandum of understanding to extend the ceasefire by 60 days. The Nasdaq Composite Index surged 0.9% to end at 26,917. The S&P 500 gained almost 0.6%. to close at 7,564, and the Dow Jones Industrial Average rose marginally to close at 50,669. On the economic front, real gross domestic product GDP increased at an annual rate of 1.6% in the first quarter, down from the earlier estimate of 2% as per the second estimate released by the US Bureau of Economic Analysis. A separate report by the Bureau showed that headline personal consumption expenditures PCE price index dropped to 0.4% in April on a monthly basis from 0.7% in March.
0: सुषमा, बहुत संक्षेप में मैं ये जानना चाहता हूँ, अमेरिका की जो आर्थिक आंकड़े हैं वो उतने अच्छे नहीं, जैसा कि अभी लालिमा ने भी बताया कि अगर वहाँ पे जीडीपी का अनुमान 2% का था, 1.6% रहा, उसके बावजूद भी बाजार उसको सकारात्मक तौर पे ले रहा है। एशियाई यूरोपीय बाजार भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ मिडिल ईस्ट का असर सारा का सारा भारतीय बाजारों पे पड़ रहा है, वहाँ के बाजार इसे छूते हैं, क्या ऐसा ही है या कुछ और बात?
1: नहीं, वो देखिए अलग अलग देशों का अलग अलग इम्पैक्ट है वेस्ट एशियन वॉर। हमें देखना है कि हमारी जो हम जो आयात करते हैं वहाँ गल्फ से, वो इसका बहुत ज़्यादा असर है। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड, तो और ज़्यादातर हमारा तेल जो है 50% तो कम से कम गल्फ से ही आता है, वेस्ट एशिया से ही आता है, तो उसके काफ़ी जो ये जो असर हैं इम्पैक्ट हैं सब लोग जो एनालिस्ट हैं वो ही ये समझते हैं। तो अमेरिका का आप कहे इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि वो खुद ही तेल बनाते प्रोड्यूस करते हैं और दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
0: होने के बावजूद वहां पे तेल की कीमतें भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, लगभग दो गुना है,
1: बिल्कुल।
0: उसके बावजूद भी शेयर बाजार उनका बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, ये कुछ अजीब सा नजर आता है। और जीडीपी के आंकड़े भी ठीक है, वो तात्कालिक ही सही, शॉर्ट टर्म में ही उनका जो अनुमान थे उससे कम आए हैं, लेकिन उसका बाजार फिर भी एक बेहतर स्थिति में है। और अगर एशिया की बात करें, एशिया में भी आज की अगर खासतौर पे बात करें तो चीन को छोड़ के बाकी सभी बाजारों में तेजी का दौर रहा है। क्या वजह मानते हैं आप कि सिर्फ सेंटिमेंटल अच्छे नजर आ रहे थे, उम्मीद थी कि हॉर्मोज पे ईरान यूएस में कुछ हो जाएगी डील, इस वजह से या कुछ और?
1: नहीं, ये हॉर्मोज का ही असर है। और ये अगर आप देखें बाकी जो बाजार है उनके और भी कोई डोमेस्टिक वजह होंगी, लेकिन अमेरिका तो हम ठीक कह सकते हैं कि उसमें अभी भी वो एआई का जो बबल चल रहा है, टेक्नोलॉजी कंपनीज का जो असर है। और अब जैसे हमने कहा कि तेल का जो उत्पादन है अमेरिका में अभी भी वो सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं से आता है, तो अभी के दाम जो बढ़ गए हैं उससे शायद जनरल जो अवेयरनेस है कि भाई ये जो वॉर है ये गलत काम है, लेकिन उससे उनकी आर्थिक स्थिति कम नहीं हुई है।
2: Also the fact that US markets are driven by major few tech companies, big
1: yes,
2: ones.
1: That's what right? I meant, yeah. The AI boom that is going on. Yeah.
2: Right. All right. Look at the oil prices. Global crude oil prices dropped today. Brent crude was trading 1.7% down at $92.14 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 1.4% lower at $87.64 per barrel when reports last came in. And a look at the bullion market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.6% down at 1,56,760 rupees per 10 grams, while silver

0: was trading over 1.1% lower at 2,67,360 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi commodity exchange mein June ke vaida karobar mein sona 0.6% ke nuksan se 1,55,961 rupaye prati 10 gram ke star par raha. July anubandh wali chandi 1.1% ki giravat se 2,66,536 rupaye prati kilogram ke star par karobar karti nazar aayi. Sushma, काफी संक्षेप में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें देखते हैं, निरंतर अच्छी खबरें हैं क्योंकि हम मूल तौर पर आयातक हैं.
2: बिल्कुल.
1: और अगर उधर वहीं सोने चांदी की हम कीमतों के बात करते हैं, डॉलर कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं, थोड़ा सा आज उसमें कमजोरी है, लेकिन उसके बावजूद भी सोना तकरीबन अपने जो स्तर है उसके आसपास ही है. चांदी का भी यही हाल है. दोनों चीजों में अभी क्या फौरी तौर पे नजर आता है?
2: देखिए, सोना तो है वो सेफ हेवन एसेट है. अभी जो उथल पुथल हो रहा है पूरे विश्व भर में, उसका असर सोने के ऊपर और चांदी के ऊपर आया है पहले. और सिल्वर भी, चांदी जो है वो भी सेफ हेवन एसेट इस वक्त माना जा रहा है. हालांकि हमेशा सोना ही होता था, लेकिन सोने का जो भाव है एक साल में कितना 30% बढ़ा है, तो उसका वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रही हैं. और ये जब तक ये टेंशंस कम नहीं होंगी, इसका इनके दाम भी यही रहेंगे.
1: चलिए सुषमा, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
0: Absolutely, yes, friends. Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices shed around 1.5%. Sensex drops nearly 1,100 points. Nifty settles below 23,600. Robust macroeconomic fundamentals will support growth trajectory of Indian economy in current fiscal year, despite headwinds, says RBI in its annual report. And global crude oil prices decline. And well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amit Goyal signing off. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और आरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Union Home Minister Amit Shah has said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today. The minister said the central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. The Home Minister announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadrupedite security grid. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure the seed availability to the farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing, and ensuring proper supply to genuine farmers. He said that the government remains committed to protecting farmers' interests and ensuring that fertilizers are utilized solely for agricultural purposes. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country, and all the refineries are operating at optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that LPG production is at all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
2: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery, and that impacts the production, and that's why we have slight up and down. One thing. Second is, we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is, some of the refineries have come back to operations and other

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரியங்கா அரோடா. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई है। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने छठे ओवर में 2 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Union Home Minister Amit Shah has said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today. The minister said the central government is leveraging cutting-edge technology including drones, radars and modern fencing to establish an unbreakable, leak-proof security grid. The Home Minister announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure the seed availability to the farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing and ensuring proper supply to genuine farmers. He said that the government remains committed to protecting farmers' interests and ensuring that fertilizers are utilized solely for agricultural purposes. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that LPG production is at all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
2: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery and that impacts the production and that's why we have slight up and down. One thing. Second is we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is some of the refineries have come back to operations and other than that we are getting more, you know, LPG because of the optimization from some of the refiners.
1: Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts reported more than 30%. Myanmar President U Min Aung Hlaing will be on an official visit to India from tomorrow till the 3rd of June. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that during their bilateral talks, Prime Minister Narendra Modi and the visiting dignitary will discuss how to strengthen bilateral ties further. Replying to a query on legal migrants of Bangladesh, Mr. Jaiswal

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
4: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक

0: उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय

परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसंख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसंख्या की बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। मुख्य समाचार। इबोला के बढ़ते मामलों के बीच

0: बोला कि बढ़ते मामलों के बीच भारत ने अफ्रीका को चिकित्सा सामग्री की पहली खेप भेजी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। अमेरिका और ईरान ने मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए 60 दिवसीय अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा की। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1.5% की गिरावट और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि कांगो गणराज्य में इबोला के 906 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 223 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। कांगो में इबोला के बुंदीबुग्यो स्ट्रेन का संक्रमण जारी है। युगांडा में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कांगो में इबोला के 125 मामलों की पुष्टि हुई है। युगांडा में भी इबोला के 7 मामलों की पुष्टि हुई है, हालांकि सामुदायिक संक्रमण की खबर नहीं है। पूर्वी कांगो में इबोला संक्रमण 2 महीने पहले शुरू हुआ था। बुंदीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई अनुमोदित टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ लंबे समय से जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ने एक सप्ताह में ही सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध करा दी है। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग क्लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि भारतीय व्यापार दल ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भी भारत आने की उम्मीद है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष राजनयिक वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों पक्ष मौजूदा युद्ध विराम बढ़ाने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने के लिए 60 दिन के अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा कर रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पुष्टि की है कि वार्ताकार प्रारंभिक समझौते के बहुत

0: करीब हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम स्वीकृति अभी बाकी है। एक रिपोर्ट।
1: ताज़ा परिस्थितियों के मद्देनजर खाड़ी सहयोग परिषद के देश तेजी से कदम उठा रहे हैं। इन देशों के लिए युद्ध विराम का टूटना केवल एक कूटनीतिक झटका नहीं है बल्कि अस्तित्व का संकट है। कतर ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री नियमों को लेकर अंतिम गतिरोध को सुलझाने के लिए ईरान में विशेष मध्यस्थता दल भेजे हैं। कतर एक संरचित एस्क्रो व्यवस्था स्थापित करने पर भी काम कर रहा है ताकि ईरान को जारी किए जाने वाला धन केवल मानवीय सहायता से जुड़े कार्यों में हो सके। एक और जटिलता लेबनानी पहलू में निहित है। ईरान ने दबाव डाला है कि यह समझौता ज्ञापन सभी क्षेत्रीय मोर्चों को शामिल करे, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इसराइल के निरंतर सैन्य अभियान और विस्थापन आदेशों से एक महत्वपूर्ण विसंगति उत्पन्न होती है। वर्तमान में तैयार किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार लेबनान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 1.5% की गिरावट आई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 1.7% गिरकर $92.14 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ताज़ा समाचार के अनुसार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी 1.4% गिरकर $87.64 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कैरोस हर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की आशा है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स और ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरुण ताई को हराया। वहीं भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ने चेन तांग जी और तो ई वे की मलेशियाई जोड़ी से वॉकओवर मिलने पर अगले दौर में प्रवेश किया। तो ई वे के घुटने में चोट लगने के कारण मलेशियाई जोड़ी को मैच के बीच से ही हटना पड़ा। कैलिफोर्निया के 14 वर्षीय भारतीय मूल के अमरीकी छात्र शे पारिख ने प्रतिष्ठित स्क्रिप्स राष्ट्रीय स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है। उन्होंने 90 सेकंड में 35 में से 32 शब्दों की सही स्पेलिंग बताकर ये खिताब अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इबोला के बढ़ते मामलों के बीच भारत ने अफ्रीका को चिकित्सा सामग्री की पहली खेप भेजी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। अमेरिका और ईरान ने मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए 60 दिवसीय अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा की। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1.5% की गिरावट और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I'm Navanita Adhikari with the World News. The headline.

0: Please do stand by for the news in Hindi and news in English which follows shortly. Good night, sweet dreams, sleep tight. You must be sent from...
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध

0: आसन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Navanita Adhikari Srivastav. Union Home Minister Amit Shah has announced a major

இது தேனாட்டம் இனிக்கும்.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में

0: बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत फंड जारी करने और उसके उपयोग की समीक्षा को लेकर बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा 3.0 को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से SSA पीएम पोषण उल्लास पीएमश्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वयन के माध्यम से एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी तथा इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थित में भारत में सबस्ट्रेट निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने कल नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी श्रीवास्तव। Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण

0: सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग क्लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology including drones, radars and modern fencing to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security.

பெண்கள் இல்லாத உலகத்திலே கண்களினாலே என்ன பயன்?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

0: एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मित वैता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तिलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10 दल शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्रवाई की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन हांग क्लाइंग 5 दिन की यात्रा पर भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन हांग फ्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। अब फाइनल में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a 4-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology including drones, radars and modern fencing to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh

0: நேயர்கள் இதுவரை கற்று ரசித்த இந்த நிகழ்ச்சி 100.1 FM கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நான் ஏன் பிறந்தேன், அன்னமிட்ட கை, இதயவேணி ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்களை கேட்டு ரசித்தீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ATA के पुनर्गठन या इसे हटाने के निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि

0: कि सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारियों को 3 दिन के भीतर जन सूचना जारी करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने की 9 तारीख को होगी। सिक्किम में मुख्य सचिव आर तेलंग ने गैंगटोक में आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष मध्य जून से शुरू होने वाली यात्रा में 50-50 श्रद्धालुओं के कुल 10-10 दल शामिल होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग फ्लाइंग आज 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग फ्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रविवार को अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हो।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a 4-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended, and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of the National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi yesterday, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing, and ensuring proper supply to genuine farmers. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country, and all the refineries are operating at the optimum level.

0: 101.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் பண்டிட் அனிண்டோ சாட்டர்ஜி அவர்களின் தபலா இசை கேட்டு ரசித்தீர்கள். இன்னும் சில நாடுகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அபர்ணா சிங். गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग क्लाइंग आज 5 दिन के भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबार जगत के प्रतिनिधियों वाला एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग क्लाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापार मंच में भी हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति 2 जून को व्यापार और उद्योग से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई भी जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि

0: पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में किए गए उपायों की जानकारी देने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा मितवैयता उपायों के अंतर्गत लागू विषम सम संख्या वाली वाहन प्रणाली पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सभी जिला के जिलाधिकारियों को जनता की किसी भी शिकायत या असुविधा को सुनने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops in public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat yesterday.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi yesterday, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing and ensuring proper supply to genuine farmers. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that LPG production is at an all-time high, which is around 92,000 metric tons per day. Ms. Sharma also informed that no dryout has been reported at any LPG distributorship.

0: இதுவரை பொங்கும் மங்கலம் நிகழ்ச்சியில் தாளூரி வெங்கடேஸ்வரலு, மலையாத்ரி ஆகியோரின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். கே ஸ்ரீனிவாச ராவ் அவர்கள் தவில்.
1: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டில்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं की सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया जिला पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन गया के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कल म्यांमा के राष्ट्रपति की म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD News को दिए एक साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला HI सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह वाणिज्यिक पैमाने पर निगरानी, ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स और ड्रोन आदि के लिए स्मार्ट विजन उपकरणों को शक्ति प्रदान करेगा। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह PSBA के सहयोग

से विकसित किया गया है। PSBA देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पोर्टल www.unclaimedaassessedtsportal.in एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जो वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।